0: मुना बेटा, क्या कर रही हो बेटा? इस तेज धूप में आंगन में क्यों खड़ी हो?
1: मुझे खेलना है, सुबह पढ़ाई कर ली, खेलने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए थोड़ी देर खेल लेती हूँ।
0: कैसी बच्ची है, गर्मी से पिघलने वाली है, पंखे के नीचे भी गर्मी सहन नहीं हो पा रहा है। तुम जल जाओगी बेटा, मेरा कहना मानो, संध्या के समय जब गर्मी कम पड़ जाएगी तब खेलना।
1: तब तो बाबा पढ़ाई करने के लिए कहेंगे।
0: मेरी अच्छी बच्ची, आ जाओ अब, अपनी माँ के साथ कहानी सुनते हुए खेल लेना। आओ कहानी सुनाती हूँ। कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे बाबा मिठाई नहीं खरीदेंगे बेटा।
1: आई आई।
0: हाय, पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। मैं पूछ लेती हूँ, पंखे के नीचे तो थोड़ी देर बैठ लो, मुंह भी पूरी तरह लाल हो गया है। अच्छा लगा, अब गर्मी थोड़ी कम हो गई है।
1: अब ठीक है, अब कोई गर्मी नहीं। मजेदार कहानी सुनाएंगे कहा था ना। अब सुनाओ माँ, मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ।
0: सुनाएंगे जरूर, हम आपको कहानी सुनाएंगे बेटा, तो फिर ध्यान से सुनो। पुराने जमाने की बात है, तब दो मित्र रहते थे, एक राजा के पुत्र और दूसरा एक सामंत का पुत्र। दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। वे एक साथ एक थाली में खाते थे, एक साथ अध्ययन करते थे, घूमते काम करते थे।
1: माँ, क्या उनके दोनों पिता भी अच्छे मित्र थे?
0: हाँ, दोनों पिता भी अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों पुत्रों की मित्रता इतनी गहरी थी कि लोग भी आश्चर्य में पड़ गए थे। वे दोनों एक साथ विदेश जाकर गहन अध्ययन करते थे।
1: किस विद्या का गहन अध्ययन करते थे?
0: यहाँ कोई किताबी ज्ञान का अध्ययन नहीं है बेटा, वे अलग प्रकार की विद्या का अध्ययन करते थे। ऐसी विद्या जिसमें अपने शरीर को त्याग कर दूसरे प्राणी का रूप धारण करना।
1: ओह, असल में ऐसा होता है क्या?
0: हाँ, कहानी को मजेदार बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन कहानी के अंत में हमारे लिए एक उपदेश दिया गया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आदि बातें। यहाँ अनमोल संपत्ति उपदेशात्मक रूप में हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा है बेटा।
1: माँ, आगे की कहानी सुनाइए।
0: मेरे बच्चे, तुम बहुत बेसब्र हो रहे हो।
1: जी माँ।
0: फिर सुनो, दोनों मित्रों ने गहरी अध्ययन कर अनोखा विद्या अर्जित कर ली। उन्होंने ऐसी विद्या सीख ली कि अपने शरीर त्याग कर उनकी आत्मा दूसरे प्राणी के रूप में धारण कर सकते हैं।
1: अरे।
0: और राजकुमार अपने शरीर को त्याग कर स्वर्णिम तोते का रूप और सामंत कुमार एक स्वर्णिम हिरन का रूप धारण करने लगे। इस विद्या को पाकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था।
1: फिर क्या हुआ, आगे बताइए माँ।
0: सुना तो रही हूँ, क्यों बेसब्र हो रही हो?
1: माँ, गुस्सा मत हो, मैं बस सुनने के लिए बेसब्र हूँ।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, माँ अपने बच्चे पर गुस्सा करती है क्या? अच्छा तो फिर सुनो, उन दोनों मित्रों ने सोचा विद्या अध्ययन समाप्त हो गई है, अब घर वापस चले।
2: मित्र सामंत कुमार, घर छोड़ के विदेश में रहते हुए बहुत समय हो गए, अनेक प्रकार के विद्या ग्रहण कर ली जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते, अब घर वापस।

0: चलते हैं। राजमहल और अपनी प्रजा को देखे हुए अब काफी समय बीत गए हैं मित्र।
1: राजकुमार की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है
0: मित्र।
1: जो कुमार की इच्छा वही मेरी इच्छा। कब वापस चले बताइए मित्र।
0: मित्र आज ही वापस चलते हैं, तैयार करते हैं।
1: हाँ ठीक है मित्र, सब तैयार कर लेते हैं।
0: हाँ।
2: यही सोचकर वे दोनों अपने घर की तरफ वापस आ गए। चलते चलते राजमहल की ओर नजदीक आ गए। अपने मित्र राजकुमार को देखते हुए वह बोला,
1: प्रिय मित्र अब राजमहल पहुंचने वाले हैं।
0: हाँ मित्र राजमहल पहुंचने वाले हैं।
1: दूर से आने की थकान हो रही है, क्या इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर ले।
0: हाँ मित्र दूर से आने की थकान तो मुझे भी है, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। इस पेड़ के छाया में मन हवा के आनंद लेते हैं मित्र।
1: हाँ ठीक है मित्र।
0: थकान थोड़ी बहुत कम हुई मित्र, कुछ पानी पीने को दे दो।
1: मित्र क्या हमारे जो विद्या सीखी है उसकी परीक्षा यहाँ करके देखें, यहाँ कोई भी नहीं है।
0: यदि मेरे मित्र चाहे तो देखते।
1: तब तो आप पहले विद्या का अभ्यास करके देखो, मैं आपके बाद दिखाऊंगा।
0: ठीक है मित्र। देखो मित्र मैं तोता बन गया, कितना आनंद प्राप्त हो रहे हैं। अब अपने पंखों को फरफराकर उड़ सकता हूं। मित्र तुम भी हिरण का रूप धारण कर लो।
1: हाँ कर लेता हूं, मैंने भी हिरण का रूप धारण कर लिया है। तोता बने राजकुमार के शरीर को जला देते हैं, तब तो राजकन्या भी मेरी और राजमहल भी मेरा।
0: मित्र तुम तो हिरण के रूप में उछल उछल कर कूदने से थक गए होगे मित्र।
1: हाँ मित्र मैं आराम कर लेता हूँ, मित्र तुम कुछ देर और खेल लो।
0: ठीक है मित्र।
1: मैं उसके शरीर में प्रवेश करता हूँ और मेरे शरीर को जला देता हूँ। मित्र मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ और राजकुमार बनकर राजमहल में राज करूंगा।
0: मित्र तुमने अपने एक मित्र से विश्वासघात किया, तुम एक निर्मम और तुष्ट व्यक्ति हो, बहुत भयानक आदमी हो, मेरे सादगी को तुमने कलंकित किया है मित्र।
1: समझ लो यही तुम्हारी मूर्खता का परिणाम है, तुम मुझे मन भर कर कोस लो
0: मित्र,
1: तब भी कोई मुझे नहीं कहेगा कि मैं राजकुमार नहीं हूँ।
0: रुको मित्र मेरी बात सुन लो, आज से तुम्हारा और मेरे बीच मित्रता खत्म हो गई, जाओ राजमहल में तुम सुख और शांति से जियो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएंगी, एक दिन सच्चाई तुमको मार डालेगी, ये मत भूलना।
2: इस तरह वह तोता राजमहल की ओर उड़ गया और लोगों से छिप छिप कर रहने लगे। वह अपनी पत्नी से मिलने का मौका ढूंढते रहे। इस ओर सामंत कुमार राजकुमार के रूप में तोते ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे।
3: वह तुच्छ व्यक्ति तोते को ढूंढ ढूंढ कर क्यों मार रहा है यह मैं भी जानती हूँ।
2: तो क्यों मार रहे हैं बताओ।
3: राजकुमार तोता बनकर राजमहल की ओर उड़ गए थे, इसीलिए हर एक तोते को मारकर राजकुमार को मारने की योजना है।
2: तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मेरी बच्ची तो बहुत होशियार है अब।
3: माँ तोते को मार दिया क्या?
2: नहीं बेटा आगे सुनाती हूँ, सुनो तो सही। 100 दिन चोर के तो 1 दिन कोतवाल का। एक दिन उसको अपनी पत्नी से बात करने

0: का एक अच्छा मौका मिला था।
1: राजकुमारी, राजकुमारी, जरा ठहरो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है।
2: ये कैसी विडंबना है, तोते अब मनुष्य की भाषा बोलने लगे हैं। देखती हूँ क्या रहस्य छिपा है। हे प्रिय पक्षी तोते, तुमने मुझे क्यों रोका? जो कहना है मेरे पास आकर कहिए।
1: राजकुमारी, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा पति राजकुमार हूँ, सामन कुमार, और मैं विदेश विद्या अध्ययन करने गया था। तुम भी जानते हो ना, वहाँ मैंने अपने शरीर को त्याग कर तोता का रूप, और उसने अपने शरीर को त्याग कर हिरण का रूप धारण कर लिया।
2: हाय राम, आप जो बता रहे हैं क्या ये सत्य है?
1: हाँ सत्य है, मैंने जो कुछ भी बताया सब सत्य है। अपनी सेनाओं को भेजकर तोता मार रहे हैं, ये मुझे मारने की साजिश है। वह अत्यंत लोभी और तुच्छ व्यक्ति है। मेरे इस राज्य और तुमको हासिल करने के लिए मेरे शरीर को धारण कर उन्होंने अपनी निर्जीव शरीर को जला डाला।
2: हे प्रिय, अब क्या होगा? कृपया मुझे आज्ञा दीजिए।
1: सुनो, ये बात किसी तीसरे के कानों तक ना जाने पाए।
2: जी।
1: उसके सामने तुम रोने का नाटक करो, फिर विदेश से सीखी विद्या दिखाने को कहो। मैं किसी कोने में छिपा रहूंगा, तभी मैं अपने शरीर को धारण कर उस हिरण रूपी सामंत कुमार को मार डालूंगा। अपने कर्तव्य निभा लो, जाओ।
2: जैसी आपकी आज्ञा, अभी मैं जाती हूँ।
3: क्या हुआ प्रिय, जो तुम सिसक सिसक कर रो रही हो? लो मुझे बताओ, तुम्हारी कौन सी इच्छा अभी अधूरी है?
2: राजकुमार, वचन दो कि मेरी बात मानोगे।
3: हाँ, वचन देता हूं, तुम्हारी हर बात मानूंगा। अब रोना बंद करो, बताओ।
2: आपने विदेश जाकर जिस विद्या का अध्ययन किया, उसे अभी मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए।
3: इतनी सी बात, लो तुम्हें दिखाता हूं। देखो, मैं अपने शरीर को सोर कर हिरण का रूप धारण कर रहा हूं।
1: इसी क्षण मैं अपने शरीर में प्रवेश करता हूं।
4: हे दुराचारी, मैंने तुम्हें अपना सच्चा मित्र माना, मैं कितना गलत था। तेरे पापों का फल तुझे ही मिलेगा, तुम्हारे प्राण लेकर मेरे हृदय को सुकून मिलेगा। समझे, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है।
2: प्रिय राजकुमार, राजकुमार,
1: राजकुमारी, मत रो, अब कोई शत्रु नहीं है, सुख और शांति से जीवन बिताएंगे।
2: जी राजकुमार,
1: राजकुमारी।
0: तो कहानी पसंद आई?
5: बहुत पसंद आई। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, कहानी का संदेश यही है ना माँ?
0: हाँ बिल्कुल सही बेटा, आज के लिए इतना काफी है।

0: से हमें क्या सीख मिली?
1: अचुंब पाखुम पीबीरक पसिंग की मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगत लब महिरोई सिंगदा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनी सुब अमसुंग अहुम सुब तार बसिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंना पाखुम पीबीरक पदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिक चुमने इबीरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरक पाखुम पीबीरक मतंदा एपिसोड नंबर इबीरक काउबीगनु प्राइज विनर दी नसीदगी चैवल अमगी मतुंगदा लाउथोक्सेगनी नसीगी मता नसीदा कायनेया थंगनीजरी पिनबिरसी
2: रेडियो क्लास चमरी हुमुतरे छुबतांकक ताबिरे थोरमसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर गी तेंबांगा लुइनना पुथोक चब थोरमनी हौजी कुंफम नोमाइथेम सोलेंद्रोन सकप कैसाम प्रियो कुमार की मयक्ता काले नुंसा ना साबरा हैन सहौब इसई अमा दानथुक चरी

युगान देगी मायक्ता खेत्रमा युम्बिशे शोरीने सक्बा मतम इसायमा ताबिरे इसाय सिगिदमा खोईदाना एसएमएस ताबिरा किबिना कांगचुप संजन बमदगी इरोमा तखेलम बमनी हायरी बा इसायसी रेडियो ताबिरी बमदी लाइफ ता लेबिरी बा मयांग पुन्ना तामी नजगे हायना हायबिरा किबानी एसएमएस असिदा मयाम नुंगाईना पुन्ना तामी तामी नरंगानी हायबसु खजई मथंगे एसएमएस मा मुगलो खजगे मथंगद लोखचरी बा एसएमएस असिना फिल्म मिसय मखन बिरक बा एसएमएस ने खन बिरक लिबै से एसी डॉक्टर याइमा हरिबा फिल्म अदुदगी कैहो माउन सकबा होमेन डीवाई गि मयक्ता जी सुरचंद्र शर्माना सैरांग बिसय दुनि इसे एसी गि दमक एसएमएस थाबिरक लिबा सिना कोंगपाल खाइदेम ले काइदेगी निंथौजम नेपोलियन नि हरिबै से एसी मरुब लोकेस ओइनाम लोंगजम ललित निंगोंबम बोगेंद्रो न्यूटन थोंगाम अमदी लाबी थैदिंग जमायामसिगे पुन्नता मिनजगे हाइना हाइबिरै खदोल तमजरी

0: ichagi apar id simba hairi bani se nangsu gyan tanaba ayama haige khoi ma yam loina maksu khangna bane ko haying hekta akhoi gi school da chatlaga oza pritam da ne hanglurasi
1: oza shanti
2: oza
1: ai oza bu ngai jaram li bane
2: oza pritam class wat li bana tro
1: oh oh ngah wat li oza
2: se mahak ase ai gi inau ni achobi kawi
1: o
2: mangun da ne apar gi maram da khara phajna amukta haira use
1: yani yani asom computer room da changa gawari saru rasi
2: hoi hoi changa se law achobi chokri du da phamu oza pritam da nang na hangning ba khangning ba loi na hangba yarani
3: oja ichanupi gi school da gi apar gi form ne na ama piri e
1: o o
3: aidi adhar haina khallure ichi mana apar haibani adhar ga khenai budi haibire
1: mane mane
3: ado ja masigi maramda laiba wafam khudinga ojana mukta haibiu
1: yani taima nanau haijage apar haibadi automated permanent academic account registry haibani taima bharat ki mahiroi singi damakta sem ga daba top top academic identity amani adhar number laiba dumaina apar gi su masing trani thoina saba id ama mahire kudingi laigani
3: oh adura
1: mane mane taima bharat ta lairiba pre primary dagina university ki thakta lairiba mahire kuding makki sem ga dauriba id ni masi amuk sem ki basina punsi chuppa chana ga daba id ni
3: punsi chuppa chana doiba
1: hoi taima mahire amagi progress report card sing Marksheets, magi atop atop fanglakpa certificate sing asi digilocker da hapa haurabani aduga apar id si sijinaraga certificate sing adu digilocker dagi yengba amadi lokthaba yadoine hojikti vocational course mahitam bada yaurabani na maduda fanglakpa mahiroi adugi credit score adusu apar id sijinaraga adumak yengba yarakadoine itaima itaima masida natana mahiroi amana NEET, GE na chingba, competitive exam sing, amadi scholarship apply ta wada, ya amna lahe lakadoy ne.
3: Eh, sidi, bengi kaon hangba gumba ni kwa?
1: Itay mama ne, adumay na hayo siya ye. Masigi kongthang asi, NEP 2020, haibadi National Education Policy 2020 gi saruk amoy na Ministry of Education gi thausil, One Nation, One Student ID gi makhada semlak pa ni.
3: Oh, asiang ba, yam gana gini masidi, ओह अदू होय रे
1: अपार आईडीएसी लैरबदी स्कूल होंगबदा नत्रगा कॉलेज अमदा मिंगचनबदा चे चांगी चेंथोक चेंसिन मथौ तार रोय तैमा
3: ओह
1: आईडीएसी हाइबदा दरकार लैब मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा लोइन थुलअनी अपार आईडी खंगलबदी महिरो यमगी फंगलक पक क्रेडिट खुदिमक भारत पुंबदा खंगब यारगनी तैमा
3: ए असेंगबा यम काना गनी मसीदी
2: अचोबी आई नहाईटा स्कूल द चलुसी ओजा प्रीतम उनरीसीयाना
3: अचुंबनी चेमा याम नुंगाई ओजागावारी साबसी
1: ओजा शांति अपारगी कानबदी सिदल लोइद्री
2: हाईबीयू ओजा आई गी नाउसे याम खंगनिंग न लाकपनी मांगोंदने ओजाना हाईबी बा तापी बया बा लोइ नमक तमयेक सिंग न हाईबी खोबा
1: यानी यानी आई मखाता नदम हाइजरके अपार आईडी सिदी पुंसी चुपगी ओइरबनीना युम होंगगा चतपा नत्रग मपान लमद लायरिक मखा तंब चतपदा अचौव मतेंग ओइदोइने महिरो यदुगी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हाइबदी मागी मार्क फंगलकपा करम करम ब अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स लई असिना चिंगबा लोइन खंगब यादोइने
3: ओ याम फैना दुदिया
1: अपार आईडीएससी डिजी लॉकर गे लिंक तवबनिना सर्टिफिकेट मयामदु फाइल मद हापगा कोई पुपुबगे ओआबसु लैररोय याम न फब खोंगथांगनी भारत सरकार ना महिरोय सिंगी दमक्त लखत पिरकलिबासी डिजी लॉकर दा चे चांग पुमनामक यावर ग लैरदोइनी अखोइना मांगखि बगी ताहौ बगी हुखि बगी अकीब पखत पसु मत लैररोय
3: याम फै आइ ज्ञान तारक ले होजिकति अदो स्कूल न मतौ करम न सेम दोइनो अपार आईडीसी बो
1: इतैमा स्कूल दा हानदगी महिरोय खुदिंगी डिटेल्स असि यूडाइस पोर्टल द यावर ग लै
3: ओ
1: इतै मोहिना सही तौरकलब कंसेंट फॉर्म अदु लोक्सलब मतुंगदा महिरोय अदुगी मिंग डेट ऑफ बर्थ आधार नंबर असिना चिंगबा मुन्न येंगलब मतुंगदा आईडी असी सेम गनी
3: ओ ओ
1: एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 न थमलिब पांदम सिंगी मनुंगदा यामना अचौब खोंथांग मनी मसिना महि तंबदा

0: 이사야 세타 한자 기부가 로이나나 땅가가 세달로 커져봐 풀마마기 이사이다 랑 풀마기 사이싱 마탕마탕 란독자바 로이자리 더름 선덕나 따한자리 바시 아카스바니 인팔기 FM 상하이 채널 덕이니
1: Work from home? High salary? Bas ek click mein? Arre waah! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मणिपुरी द मरोइबा पाओ ताबिरसे
3: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक भबुगे मरोइबा पाओ मणिपुर द हौजिक ओरिबा फिबा मियांगे मरकता ताजना भ वाटपा अमसुम ताजना भ हेंगत हनबा लंबी यापा हाइबिसकी मतांगदा असम राइफल्स न सिंधुना गेस्ट लेक्चर म पंगतो कनी एमएस एफडीएस की ऑडिटोरियम द पंगतो कद बथोरम सिदा मुख्यमंत्री युमनाम के हम जान मदी असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा सरुप यागनी अहानब मणिपुर इंडिपेंडेंट रेकॉर्ड्स दे थौरम हौजिक इम्फाल के रूम हॉल थिएटर द पंगथोकली कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन कमिटी कल्चर डिफेंस काउंसिल ने सिंधुन पंगथोकली बे थौरम सिदा लोकसभा की एमपी डॉक्टर बिमल अकोइजम सरुक यारी चुराचानपुर जिला दगी टीवी मरु फंगन मुथनब की पांदम द संचलकली बे थौरंग सिंह कयामुग यामना खुमंग जौसिलब गे हबी की मतांगदा डिस्ट्रिक्ट लेवल टीवी मुक्त भारत अभियान कमिटी की मिपम अमांगरांग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस द पंग थोखरे डिप्टी कमिश्नर की माइकई दगी मरी लेनब विभाग सिंह ना मकहाताना टीवी लेना मुथनब की पांदम द संचलिब खोंगतांग सिंह हेने यांगसिनब खंगहन की नेपाल थोकीब इंग इचाऊद मी मचिंग चौहम मरफुद्रन थोई सूरे हौजुक फावद भारत मचा चनी मरफुद्रा मई लिजिंग चामी हमफुनीपानीब खन लेरी मनुद मई चौहम मरीफुमापन नेपाल मई अहमन तिब्बत प्रधानमंत्री जनधन योजना चाहे तरह मपुंग फारे योजना इं कुमजा लिंग तरामरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूदी योजना मखाद हूँ बेनीफिसरी कोटि यांखई मापन हेब की बैंक अकाउंट हांखरे बेनीफिसरी अकाउंट हूँ लुपा कोटि लाख अहम लिंग तरह तरह हेना हाबरे लेबक सिंब तुंबद मबू मोप मचे मचल लेनरीब मरी हेन चेसिलहब की कुमई रक्षा बंधन पक्षना पांथोकली लापद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्र की लुचिंब सिंह मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सिंह यफ पौजेल पीरी पाउ लोजरें

गीत खुदोंगेनि सुबदा कविता कृष्णमूर्ति अलगायग्निक मोहम्मद अजीज मैं पुनः सौमीन बैसे मामु लांथोक्चरी।

0: किशोर कुमार ने सकप इसे ऐसी तहन जोखिब गर लोई ना तांग का गसी गोई ना दी गीत सिंगलान थोक चबा मत तांग ऐसी दलोई शिंजरे अदम न थोरम ताबी रिबसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देगी हाउसिंग चैनल ऐसी की मखा तारक पा नुंगायर बत थोरम के आगे दमक अदम के एंकर लोरेम बम टूरिस्ट खुश नजरी
1: कोंचिंग बम निर्मला चनुबो थगचरी लोइनना आकाशवाणी इम्फाल की थोरम ताबी रमलिबा मया पुम नमक पु पुंफम सिद अमुक कहना तराम नोकचरी नोलुकचरी हौजिक पुंफम सिद मुख संदोकचरी रेडियो लीला हौजिक मतम सिद लीलाइबा जीवन हैसनामबा लीला पुथोप अधिकारी मयू की चंद्र शर्मा पुथोप तिंबांग अथोप सुभाष चंद्र सिंह हौजिक लेजरे रेडियो लीला हौजिक मतम सिदा।

0: के इराय वक्त तमलम लवनी खंजा बनतना आई की करी उपाय नहीं रे
1: जमुना
0: आई वो इनाउ ले शेम बने छोई जने वारो रब कने इते ही मगी बुंगो इते ही मबु वारो गनु को लाय हो इकरा बने याम बना नंग बुई फम द सिनरम लवसु पुंची सुपाई ते ही मगले मिनाउ हाई न तमलम द्रमाले ने नहीं चेंबा मसीदी ते ही मगनुंग सी नुंग सी लाभ न बत्तार माले
1: जमुना आई बुथा जा आई ने महाक पु आई की हैक पुक मिन्दबे इनाउ नहीं खंबन बनी

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो मैडम
0: गुड आफ्टरनून कनाई बिरबनो तबीबा
1: मैडम वही कर लो अबो मरो लो एम बम नकाई देगी लाइसम ओंबी
0: जेनी लाइसम ओंबी इबेनी हबीबा को
1: बेनी
0: बेनी होय बेनी बॉय खगी आकाशवाणी इंफाल की गुड आफ्टरनून लेडीज के थोरम दा तराम नोक चरी बेनी की लाइफम से हाउबम मरक लौरेम बम लेका
1: लौरेम बम ले
0: ओ
1: काय हब
0: माइके इ कदम दो इपी दोइनो मया पुनम तं खमिन सिदना
1: माइके इजे कनो मये लंबी देगी तुम तर मे लंबी चप्पा जी की कनो देगी पिसुन जी दाई देगी खरा दम मनिंग पांग खसंग लाई
0: ओ अदु दी पंग ला ला पम फम नते को
1: आ
0: हाय

इसे इसे तांजे की बगलों ने ना मतांगे से दा गुड आफ्टरनून लेडीज थोरम संदोक जबा लोई जरे नसे की ट्रांसमिशन नसे वो पुबीरी बा इंजीनियर सिंह दी थांगजम हिन बा मदी लाइश्रम सरत ट्रांसमिशन नसे वो पुबीरी बा स्टाफ ना गिरीचा लोरिम बम नसे के खोई थोरम से दा टेलीफोन तक भी रखतो ना थोरम सरो गया भी खिबा थोरम से वो हो दी लोई भाबा था भी तो ना थोरम से वो मपुम फान भी खिबा मैं हम पुम ना मकी मफाम दा आकाशवाणी इंफाल के मैके दिगी लोरिम बम टूरिस्ट ना थकत पा फंगदोक चरी

नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त थोकचोम गीता।

दोस्तों, आज अगस्त का 28 तारीख है और आप सभी को रक्षाबंधन के इस प्यारे त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रेशम की डोरी आपके घर में खुशियां और प्यार बनाए रखें। आज मैं गीतमाला में फिल्म संगीत कार्यक्रम में रक्षाबंधन पर कुछ नगमे लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए इस रिश्ते के कुछ अनमोल नगमों से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले फिल्म रक्षाबंधन से ये गीत, जो इस त्यौहार की भावना को बिल्कुल सही पेश करते हैं। सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का।

दोस्तों, अगला गीत फिल्म अनाड़ी से। जब घर में छोटी सी नन्ही सी बहन आती है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। उसी एहसास को बयान करता है ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। बोल समीर के हैं और संगीत आनंद मिलन का।

0: दोस्तों और अब वो गीत जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है फिल्म हम से। इस गीत में आवाजें दी हैं सुरेश वाडकर, अलका याग्निक, उदित नारायण और सोनाली वाजपेयी ने। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, भाई बहन हो या पूरा परिवार, प्यार का असली मतलब यही है कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।
1: Bum bum bum bum chick chick

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल से फिल्म संगीत। दोस्तों भाई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बहन के लिए उसका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। अब सुनते हैं प्यार का देवता फिल्म से मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और ये गीत जो है दिल को छू लेने वाला है। तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। और अब थोड़ा अंदाज बदलते हैं। राखी पर भाई बहन की मस्ती, हंसी और थोड़ी सी नोकझोंक भी तो ज़रूरी है। सुनते हैं फिल्म मजबूर से ये खूबसूरत गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में रेशम की डोरी फिल्म से ये गीत, बोल इंदिवर के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

गीतमाला की थौरम ताबिरी ताबिरी से आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल लगी होजी पुंखम से मुख पुजरगली अरब मणिपुर फिल्म मदि मतामिसे की खुदोल थौरम से की खुदोल के अहनबदा ताबिरसी कोंबिरे फिल्म से की कमला मदि खोंजोय कुमार अनिगे पुनब खोंजल दा कौन सबई बुचौना सैरिंग बामदि अरिबम श्याम शर्मना सैरंग बिसे इसे खुदोल दमजरी ताबिसी

0: इसे इसे तांजे के बगल में ना मन प्रिफिल में से के खुदो संदूक ने तांजे बा मतांग असलु चरे थरम संदूक ने तांजे रे बसे आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल से किनी
1: हेलो खुंगल
2: Park kuding geroi ba thangja khungang ki thorom da sandok chaba hello khungang live phone in program lakliba august ki tangkun mapal numidangi pung taruk mini nefuda sandok chagani
1: thamjari beramda nongju thade yen singi section thaura
2: expert in election bigada ba dr asim suresh kumar retired chief technical officer kvk taminglong
1: mian ne studio ki telephone number 9362327078 dial to biduna saruk yabiyo hello khungang
0: Tabiri bese akashwani infal ge FM sangai channel degini hause makhata ba thorum western music phangbiragani

आकाशवाणी इम्फाल मेगाहर्ट्ज़ 45.5 संदोक्चरीब एफ एम संगाई चैनल ताबीरीब मैं पुनमकपु पुंफम सेदा अमुक हना तराम नोक्चरी नोलुक्चरी

0: Che detta. Pons gay? अभी भी गहरे नींद में है,
1: सो रहे हैं?
0: हाँ अभी जगा था, जोर से बोलता हूं।
2: ओ ताऊ जी, ओ ताऊ जी तोनू, अभी तक सो रहे हो? ओ ताऊ जी तोनू, अभी तक सपनों में है?
0: जवाब नहीं आया, फिर से बुलाता हूं।
2: ओ ताऊ जी, सब लोग खेत की ओर जा चुके, उठो ताऊ जी, उठो।
3: हाँ, कौन मर गया?
0: ओ ताऊ जी, मैं साउथोई हूँ।
3: हाँ,
0: देर हो गई है, उठिए खेत की ओर चलते हैं, सब लोग खेत पहुंच चुके।
3: थकान के कारण आंख ही नहीं खुली। चौथोई, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ।
0: ठीक है।
3: ओ थरो, बेम को पढ़ाना, मैं चलता हूँ।
4: हाँ ठीक है, अरे पानी साथ लेते तो जाना, भोजन की थैली भी भूलना
3: हाँ, चौथोई मेरे इंतजार कर रहा है। चलो चौथोई, अब चलते हैं।
0: मत। हाँ ताऊ जी, ताऊ जी आप तो आज चैन से सोते रहे, जगाता नहीं तो अच्छा होता, कहीं पाप ना लगे मुझे।
3: चौथोई, ऐसी वैसी बात मत करो, ठीक है? मेरी तरह बनना तुम्हारी बस की बात नहीं है।
0: ओ
3: कल की थकान से आज उठने में 5 मिनट देर क्या हो गया? रहने दो, जल्दी चलो।
0: हाँ चलो चलो।
3: इस साल फसल की उपज अधिक होने की संभावना है।
0: हाँ
3: हमारे खेत भी अगल बगल में हैं और घर भी।
0: हाँ ताऊ जी, आपकी फसल मेरी मेहनत से अच्छा होता है,
3: हाँ,
0: मैं हमेशा आपके काम में हाथ जो बताता हूँ। ताऊ जी, मैंने कई दिनों से देखा है कि आपने सिगरेट बीड़ी पीना छोड़ दी है।
3: भांजे,
0: ताऊ जी सेहत तो ठीक है ना?
3: हाँ, भांजे, सुनोगे तो जरूर हंसोगे।
0: सुनाइए।
3: मेरी बेटी अबेम कहती है कि
0: क्या?
3: सिगरेट बीड़ी पीने से टीबी होता है।
0: अच्छा।
3: हाँ, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया।
0: ओ
3: हम तेरे गांव के रहने वाले, जो मिलता है वही खा लेते हैं। फिर वो कहती है हम पौष्टिक आहार नहीं लेते,
0: ओ
3: इसीलिए उसके कहने पर सब कुछ छोड़ दिया।
0: अरे ताऊ जी, छोटी बच्ची की बात पर ताऊ जी आपने भरोसा कर लिया? उससे किसने बताया?
3: कहती है कि ऐसा उसकी किताब में लिखा है,
0: किताब में?
3: वो पढ़ रही है ना,
0: ओ
3: अब समझदार जो हो गई है।
0: अच्छा।
3: मैं कड़ी मेहनत करता हूं, इसलिए हानिकारक चीजें सोरने को कहती है।
0: बच्चा है फिर भी कितनी होशियार है,
3: हाँ
0: तो फिर मैं भी ये सब छोड़ दूंगा। ताऊ जी
3: हाँ
0: आप अंडे लाए हैं ना, मेरे पास कुछ रोटियां हैं।
3: चौथोई, आजकल तुम बहुत समझदार हो गए हो।
0: वो तो मैं हूं।
3: तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी थैली में अंडे हैं?
0: ताऊ जी समझदार वो भी मैं। ये तो खुशी की बात है। पड़ोस की बुआ तमू कहती है कि चौथोई तुम इतने बड़े होकर भी मूर्ख हो। ताऊ जी आपके थैली में अंडा है, मुझे कैसे पता चला ये बताऊं क्या? वो भी उबले हुए। बेम आपको पौष्टिक आहार खाने को कहते हैं ना, उससे पता चला। ताऊ
3: कौन कहता है तुम मूर्ख हो?
0: जी
3: उसे बता देना कि मैंने तुम्हें समझदार कहा है। मेरी थैली में उबले अंडे हैं, यह तुमने कैसे जाना? बताओ भांजे।
0: बहुत ही आसान है।

0: कच्चे होते तो टूट जाते, उबले हैं इसलिए नहीं टूटे। जब हम दोनों थक जाएंगे तो खा भी सकता है।
1: हाँ, चौथोई, सच में तुम बहुत भोले हो।
0: ताऊ जी,
1: देखो, बातें करते करते हम खेत तक पहुंच गए।
0: हाँ
1: सब लोग खेत में आ गए हैं। आ जाओ, आज तो निराई करेंगे।
0: हाँ
1: फसल के बीच उगी घास को एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस हम सब निकाल फेंकेंगे।
0: निकाल फेंकेंगे ताऊ जी। ताऊ जी, वे पहले पहुंच गए लेकिन मुझसे तेज कोई नहीं कर पाएगा। मैं जल्दी हाथ चलाता हूं। ताऊ जी, सब चीजें उस झोपड़ी में रख दीजिए।
1: हाँ,
0: ताऊ जी, मैं पहले खेत में उतरता हूं।
1: ठीक है, जाओ। मैं सामान ध्यान से वहां रख देता हूं। कितना प्यारा भांजा है, मेरे जीजा और बहन का एक लौटा बेटा है, पढ़ाई छोड़कर खेती कर रहा है। ठीक है, यहां भी बहुत अच्छा है।
2: अरे बैम बैम, अभी तक आंख नहीं खुली क्या? उठो।
3: हाँ माँ, उठ गई हूँ।
2: अरे हाथ मुंह धो लो, दूध रखा है उसे पी लो, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे।
3: ठीक है माँ, हाथ मुंह धोकर आती हूँ।
2: आ जाओ।
3: आई माँ।
2: हम माँ बेटी जी जान से पढ़ाई करेंगे आज। तुम कौन सा विषय पढ़ोगी?
3: किसान के मित्र और शत्रु, वही
2: किसान के मित्र
3: मित्र
2: और
3: और शत्रु।
2: शत्रु। चलो, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां किसान और मजदूर ना हो। किसान का काम है हल चलाना और जमीन जोतना। वह हल चलाते हुए जमीन जोतकर खेत तैयार करता है और फसलें बोता है। लेकिन धान की खेती के लिए ज्यादा पानी चाहिए। गेहूं, गन्ना, भुट्टा और अन्य फसलों के लिए उतना पानी नहीं चाहिए होता। धान की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए बारिश को किसान का मित्र कहा गया है।
3: माँ, क्या आवश्यकता अनुसार बारिश नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा क्या?
2: हाँ, इसलिए तो बारिश को किसान के मित्र कहा गया है। बादल किसान की आंखों का तारा। बादल पानी बरसाता है, तभी किसान खुशी से झूम उठता है। तब फसल की सिंचाई होती है, इसलिए बादल किसान का प्रथम मित्र है।
3: क्या बादल के अलावा किसान के और भी मित्र हैं?
2: क्यों नहीं, उसके दूसरे मित्र भी हैं। दो बैल और मजबूत हल। वह हल बैल के सहारे जमीन जोतता है, फिर धान तथा अन्य फसलें उगाता है। और उसके अन्य मित्र वह लोग भी हैं जो उसके उत्पादन को भारी मात्रा में खरीदते हैं। फसल की खरीददारी से उसे पैसा मिलते हैं, उन्हीं पैसों से घर चलाते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। इन पैसों से अगले साल की खाद, बीज आदि का भी प्रबंध किया जाता है।
3: माँ,
2: हाँ,
3: किसान का जीवन तो अत्यंत मर्मिक है। अगर वे नहीं होते तो अमीरों के भी खाने के लिए चावल, दाल कुछ नहीं मिलता।
2: बेटा, इतना ही नहीं, बहुत सी सब्जियां जैसे गोभी, बैंगन, मिर्च, सरसों, टमाटर आदि जो भी सब्जियां बाजार में मिलती है, ये सब किसान के उपज हैं।
3: सचमुच माँ, किसान के बिना तो हम मनुष्य जीवित नहीं रह सकते।
2: मेरी बच्ची, आज जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सत्य है, इसलिए किसानों को कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए।
3: माँ,
2: हाँ,
3: स्कूल में मेरी सहेलियां कहती है मेरी पापा डॉक्टर है, मेरी पापा इंजीनियर है। बैम, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तब मैं लज्जित होकर कहती हूँ, मेरे पापा किसान हैं, लेकिन आज से मैं किसान के

0: महत्व समझ गई हूँ। कल देखना मैं उन लोगों के सामने बड़े गर्व से कहूँगी मैं किसान की बेटी हूँ।
1: शाबाश, ये हुई ना बात। भले ही कोई कितना भी अधिक कमाने वाला हो, किसान के बिना वे भूखे मर जाएंगे।
0: माँ, मैं खूब पढ़ूंगी और MCS अधिकारी बनूंगी। तब मैं सबसे कहूंगी, अगर मैं किसान की बेटी नहीं होती तो इस बड़े ओहदे को प्राप्त नहीं कर पाती। माँ, हम दोनों मिलकर पापा को तंदुरुस्त रखेंगे। हमारे इतने सुंदर और बड़ी जमीन पर नींबू, केला, सीताफल आदि अनेक फल उगते हैं। आमले के 4 पेड़ों पर सुंदर सुंदर आमला लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पापा के खाने के लिए फलों की कमी रहने नहीं देंगे। इन फलों को बेचने से भी अच्छी कमाई होती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ।
1: इसलिए तो बेम, तुम अपने मन को छोटा मत करना। तुम्हारी सफलता के पलों का हमें इंतजार है। आज से जीवन के एक नए पृष्ठ की शुरुआत करते हैं।
0: हाँ माँ। माँ, पापा को पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिलाना मत भूलना।
1: तुम्हारे पापा मुझे तुमको पढ़ाने के लिए कहकर वह तो सुबह जल्दी चाउथोई के साथ खेत की ओर चले गए। मैं आगे पढ़ाती हूँ तुम्हें।
0: माँ, मेहनती पिता की बेटी बनकर पैदा होना सौभाग्य की बात है। माँ, अब किताब की ओर ध्यान देते हैं। किसान के अनेक मित्र हैं, क्या उनके कोई शत्रु नहीं है?
1: क्यों नहीं होंगे बेटा, उसके शत्रु भी कम नहीं है। कभी कभी प्रकृति भी किसान के शत्रु बन जाती है। ज्यादा वर्षा होने से बाढ़ आ जाती है और फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती है। नियमित रूप से वर्षा ना होने से किसान की बहुत हानि होती है। समय पर पानी ना बरसने से जमीन सूख जाती है और एक भी अनाज की उत्पादन नहीं होता। अधिक वर्षा होने पर बाढ़ के साथ साथ किसान की सारी फसल बह जाती है।
0: माँ, किसान हाँ? के और भी कोई शत्रु है क्या? अगर है तो बता दीजिए।
1: हाँ, और भी है ना, कीड़े, चूहे और पशु पक्षी। वे किसान के फसल को नष्ट कर देते हैं। इन सब के बावजूद किसान अन्न उगाकर सबका पेट भरता रहता है। इसलिए वह मानवता का सच्चा सेवक है।
0: जिन बातों का मुझे ज्ञान नहीं था उन्हें आपने समझाया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे रोज पढ़ाइए।
1: चलो बेटा।
0: ठीक है माँ।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯚꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न है किसान को छोटा नहीं समझना चाहिए ये ऐसा क्यों कहा गया है आज का प्रश्न है किसान को छोटा नहीं समझना चाहिए ये ऐसा क्यों कहा गया है
0: अचुंब पाखुम पीबीरप सिंह की मनुंगदगी लॉटरी तौरगा खनगतलब महिरोई सिंहदा अहानब मना ओइना लुपा चमंगा अनीशुब अमसुंग अहुमसुब तारब सिंहदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंना पाखुम पीबीरपदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिकचुमने इबिरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरो पाखुम पीबीरप मतमदा एपिसोड नंबर इबिरप काउबीगनु प्राइज विनर दी ngasidagi chaiwol amagi matungda lawthok segani ngasigi di mata ngasida kainaya thangni jeri pinabirasi
2: hozik tabiri

मखल मथल की थरुम कयाम संदुक न तहन जरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की मेघर्ष चामागोम तस्मा दसंदुक जरीबा एफ एम संगाई चैनल दिगनी हौज मुफम से पुजरकली तोान तोान सैसप सैसपी की खोजल मणिपुरी फिल्म से खुद थरम से खुद की अहमद तबीरसी मनी थोब फिल्म पुष्परानी की नाइट खोजल रोमी मैतना सैरेंब तुम थाजना सैरंग इसे खुद तमजरी तबीसी

0: मी
1: बाबा इनका से ऑफिस का जरा रोय आई सेम बोले ने मोरे टू से बता दी जमुना से याव गनेरी बाबा
2: परे परे अदन पामसा ना कोई ना दुम ने लमला पसत खगा युम द लेहोरी बा अल ओरे बा नमा ना पाई खोइने लेभम खंगलोय थवाई वारम गनी हबेसे मिकु पमत काव गुनु कोन पामसा
1: बाबा अतु बाबा गरम तमो से चपी रु बदबु अनाय याव गिरा नत्रगन अचिन ब कई लेबिगिन बाबा
2: एरा करिसे थुदो कुलै बने तेदा
0: ओय बाबा
2: इपाल ना याम इ सतम मुरक तबदी मतम दु सांगे दो नयामदु उनिंग मंदिर चलु बनी नहाय अदुंगाय खोयाय मा
1: बाबा
2: ननाउनी पासी ममान ममान नबदी मिरे इबाक त महि तम सन्न ब हाइदने थौरांग पुनम सेम सादर लोइन खबनि दो इशा सिगी सेमम कस्तम वात्रे पान नवन निंगसिंग बदबु नखोय उपाय ग लैदोरि ब्रन हाय
1: हाय यानी बाबा यानी आइ जमुना द लोइस नजर बने
2: ओ नंग
1: यार आइ ड्रेस मंगल लोइरे
2: अ बिमा बिमसा नहीं कोई पावा है कि नहीं से ना ना तो मसना मेरे बाग तो मही तम संग मत सेम घर सकन दबा अदु खजतम वात्री पानी याई मदे निंगसिंग बनी अदु याई मने बाबा यारनी अद हाइरम ले ना कोई दे ले सेम भम मोरगदी इपा द मु पिसल ओ ना ना उसी का कया संग कम दो बई दो इपा हिसा मु ता नरगे है
0: आइ दे खंग दे ना पाबुं दे ले ओ सेम भम मदो तो लो फंगा पिरे के हा द पिथोकले अ लिसिंग तरह का लेडी मसिनी आरोय मुरे सकदरीबा लेनिंग।

Matam si ikui kui dana mai tai lai pak asida bodha chandra na ninchau oirak puskan sida lai pang na wa mangang na rak le ai khoi gi lai pak se hatang ti japan gi lan bu tarak dauri ne करम तौशीगे आई खोई से असम नंगांग नहीं गई मत्तम सीधा इन कुंजाले सिंह बगचमा बलगी दिसंबर के

एरोप्लेन कया बुदी पैसे लग रहेगा रेंगुल है बा खुंगा सीधा नोंठक तगे बम्बू साई थर ले नोंठक तगे बम्बू तार पे दे रेंगुन की खुंगंग सी तुम ले ने फुरा डोलान कक्षखंगे रे मी तो कया कया दो बोमन कप्तन मत मधुदा मरुन सुनू।

हरि बमदमसी द ब्रह्माद लेरी ब भारो मचिया पुन मक्षी हाय मामले मामले करम नो आई खोई ले बयार रोई नमो थाबो योम ने रे लजन मावे नंगरे ले मैं ले पाते सिन थोड़क ले हरी बतान जा अशीदा राश बिहारी बोसला भारत की

ऐ खोइबू जापान शिबू लान शिबू तौ सिरा पान सिरा पान गुम सिरा हाय दिन खन दिन लेनिंगई कांडा

चुरुक की सवारी पंजाबी खुरखा सिपाही लानी सगोन चाम गलोई न रंगगा उत्तरा हम दो न चाल थन बदे न वो पूरा लेगा मैं तै ले पाप तम ले देने लांगी तन्ने लाग ले दो हाईरी बमतम अशीरा जागा जागा दी खुदींदा अंग्रेज जापान अनीशे लांडू मते मते ठेंगरीये कलबला लोंग कोई न रख पैदा मफम सी इखं खं हो देना नों पोलों दगी एरोप्लेन खराए पाइकरत ले

0: 니빤 야웬 더웨 어디 그람 부드라 팡가디 여름 따라 잡담네 so 여름 따라 잡아 하이지 it's a big amount
1: the meme the 여름 따라 잡아 하이버지 카라 와나 토카니 하이지 바다리 도터
0: 잡음 주도 코이 차지 하비나테 에나 호지 하이지 닝이 이제 프로틴 리퀘어먼트 아두기 마틱 야메바 아두 아코이나 차리 버지 아두기 마틱 야암드레바 하이디 갭 투 아두기 마틱 레이그레바 아나 아니 타비리바 스페셜리 한게데 하이지 닝이 이제 여름 같나테 여름 두데 에나 example 오이나 하이지 버니
1: खुदम
0: होइन हाइजे बने आइदि हाइदि अदुकी मतिक चागा दउनी खोइन चाजि ने कितंग अदुक तने गैप त अदुकी मतिक लै घरे अन प्रोटीन जे खोइ मै तै चा खुम दे दी और मै तै खा खाबी आ दे बने पि चा खुम दे दी खोइ प्रोटीन जे वी आर खोइ एग्रारियन इकोनॉमी और पा हाइदि लउ सिमु तो रगा हौर पंग आक तोइ बिन ने खोइ चाक त लोइ चले चाक जि बु या और दे खोइ चाक चारे हन न लरे अन चाक जि द या जे लिटिल खोइ नेग्लिजिबल प्रोटीन ने प्रोटीन याउ दि हाइ बिन या दे सम एमिनो एसिड या वी अदर वो negligible ne khoin dakra tari baduga phangi baduga yengno tari negligible ne aluna chumi dharma gi or religion gi khoi thajana ba ama mala yasu sa nga cha da su sa nga nga nga ta cha da dia de hablete hawai dum lei hawai makhal loi cha ba yai ko nung hawai de hauraga mayam se loi cha bi ba yai ta wada bu khoin hai ja good quality hawai thong ma cha bi हवाई थों बदु मही यम हापी गनु मही यम हापदे मही है हचाग तोखी नंग न थों बियु हवाई थों बदु चाक यम चावे मोता हवाई दु यम चाबियु एंड अमाउंट अमा हाइफेड ऑन थोगा कटोरी में हाई तरह कोई तिंकोर मचा मदम कोई की चरा खुदिंग दम हाप न बतो बियु येरुम चाब मी खेने दे दम येरुम अमन अत्र अनी दी चाब दा नो मद दम खरा मतिंग पांगी ग्राम त्रावा गुम दम येरुम फंगी न दम लोबियु रिगार्डिंग प्रोटीन पाउडर खुदिंग मग मान दे protein powder je asomna laira kana yengbi doi je maning da protein powder doi maning da yengbi adu ga protein per 100 gram na swen tharang mani ada 20 gumba na mana 20 hoi brandi panjaro ge but 20 ang toi ge 20 gumba 25 gumba 30 gumba masi khanbi gram cha mada 20 gram protein ya ho hebni adu ga protein powder du na ana mana 400 gram gumba ya ho ana 400 gram ya uta di ग्राम चा मद कुन याउता दे प्रोटीन दो 400 ग्राम दे शुपनगी ग्राम मरी फुख ग्याउ रे ग्राम मरी फु दु दि नोंग नि नेगे प्रोटीन रिक्वायरमेंट मदुना होय ये आवाद पदो मेंजन बजु नम बद कितंग आवाद पद मेंजन बद कितंग मतेंग पांग नि बट यम आवाद पद मीडिया दे मदु नम मोय ऑन याता दि 40 टू 50% प्रोटीन याउबा protein powder do baby you description da dum yaw bani box to gimaning da do pab you any of habag brand ma gitum shijena bai ai adu bu tum bada wa ba digestive issue lai bai yawi madu ita di protein amuk tang da pulap thapi gano do so handhara ga tang khai handhara ga ani ek thona thapi asu yai adu na body do na akhoi ye intestine na akhoi ye digestive system na handle to bu jun nu mai wa ba jo ad ha noira di ma ji problem dum lai gali ona hekta protein pithai ne na am tu ad one go pithak pe dakha ta di no ngod ani ahong rak thak na chang na dum thak pa ju dum ye
1: doctor marak sida khang chen ning bo afa ma mana cha ba ya di ha ju na test out da bida na traga doctor ga ta na da bida pharmacy ma de hekta chat laga khoi ki vitamin am hekta lai ra ga pithak pa sugum ba gi chat na bi se doctor amoina aduga medical practitioner amoina kari wafam thambini ni
0: ahan madam cha ko na panbi gi ba phai cha tha pa yak ta je khoi na sigi topic che ya mai le ni ahan ching da de dum thing ne hai de ai cha tha pa yak te chaning thani bhawak te ma se khoi gi khoi frets phenotype hai ne le khoi gi frailty hai de chonda ba gi ahan gi chonda ba gi own ba gi hai ta re ko measure to ba gi ma je moina madad ke ke ya wi maram lai te na weight han da ba gum ba da gi pangma do ba ba da gi chatpada tapthrakpa hai hana chatpagi khongkap ki chang ji tapthrakpa duga khoigi activity jan darakpa chigum ji dum yawe ana chaw thakpa ya tab ji ju dum yawe na masida hande khoina toina thengne dubu chaw thakpa ya tab maram se not only khoi chumnagi chahi mata ni chondra pa yom da bachi yai kidney problem le shu chaning thaning phok da yawe liver gi problem yam toina khoi thengne chaning thaning phok da yawe even khoi gi stroke che silent stroke ta khraba yam kana symptom de utraba adu bodu ju dum thengne ba yawe aruna akhoi chumnagi hana le ramba state tu dagi akhoi han gai jina hekta anu ba symptom am purakpa chaw ya da ba lingu ya da ba chatpa da tathar pa ga sain haje ba do lingu ma makta ba chi mayam chi uta de ahan ba da doctor ma ta na bi ba thuna

0: 공감기 더러움 따비래.
1: 하이 돌리.
2: 하이.
1: 나 그래. 난 너 깨달아이도 가이사케 해도.
2: 아이기 두가네마 한국에도 에드버티스맨암다 합기나 나혼다 다나기나라이니.
1: 에, 양페이케노도디야. 가리가리노 원난기 두간도 방이가 해리스나.
2: 아이기 디 베라이티 스토어네. 홀세일 수 아도 리테일 수도 미아오리다.
1: 오. 아도 오래디네. 홀인디아리도 인팔다. 꼭절루야 드로능보.
2: 오. 아도 미로이나 막다 여한 바붕암 도리브로두바.
1: 가리기 넘보이도노 해. 진콩 싱야다 나타나. 아할나하 미쿵 띵나 타나리바. 상하이 채널 하이브 아마가네. 강라 채널 하이브 아마가 아니레르버니 코호직티야.
2: 오오. 마멀디키 아하락토 이자노. 아도 아이디야 아마가디 탈리고.
1: 이시스. 마멀기가수 칼리마레.
2: 칸드라디 가이노 낭보.
1: 루파 삼리 장마다기 호로가네.
2: 아.
1: 소이스 바야 멈술레르 미돌리.
2: 오오. 아도 에이타르가디 콰이디기 파바 옵션시 마시나 오이레니나디 칼레.
1: 토토토토. 오이도이네. 마시나 콰이디기 파바.
2: 옴나마쿠타람노 옥차리. 아카스바니 임팔기 커머셜 섹션 다 랭신 비르우 아돔기 파우젤 미오이 라카 카야다 요헌제게
3: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है. सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है. कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है. आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है. जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं.
4: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं. पीएम जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम.
5: नबानीदी याम कुइरे दाइने खंगनारपा अदुगा कैगिनो एचआईवी टेस्ट तो लोइदे नबानीगीसे अमना अमबु याम थाजना दबाई वानीने
6: अदुइन तेदा एचआईवी टेस्ट तो तोतुना एचआईवी लै नत्रगा लैते न खंगतो फाइबसे यामनो फब थबकने
7: मसी हकचांग फन लैबा अमदि अखोयानीगी तुंगी पिनसीगी दमकने अदुना एचआईवी टेस्ट तो दुना इसागी एचआईवी स्टेटस खंगतो फाइबसे रुटीन हेल्थ चेक कपकी सरु अमो हेलादबने
5: एशु एचआईवी टेस्ट तो तोतोकनिंगे दुदा कहीं पॉजिटिव होगा मैं खाद्रो
7: एच आई वी टेस्ट तब है कन्फिडेंशियल नंगी टेस्ट की रिजल्ट कनामता है नंगना एड्स की मरम हेन खाबी एच आई वी हेल्प लाइन नंबर 1097 कॉल तौसलो अकूप मरण लोन खाने चलो.
8: विक्रांत गोल विक्रांत गोल विक्रांत गोल संगम किलो अनी हार नग लेंगो तोलना लौद तारकदब मयोन सिक्पी मना कोंसिनबी उतोंग तिन अमदी वाहित तगी गाथोप गमे फंगफम एग्रो वैल्यूज कैसामपात नियर सिसिपुर बस पार्किंग अमदी मनाक नकपा तिलार हिदाक योनफम सिंग
9: ब्रान जी आर याम न कानरब लौगी विटामिन अमनी ब्रान जी आर सिजनबना फौ पाम्बीबु लैना तिनादगी नाथोप गमी फौ पाम्बीबु मचा हेन पुथोक हंदुना पुथोक हेंगलली चौदम थीबा अमदी मरा चतप गमदब पाम्बी सिंग हम हम लाउन चाहोली ब्रान जी आर सिजनबना हारगी चांग हंथन बया संगम अमदा सुपनतगे केजी अनी दगिना केजी अनी मखाइ फौब सिजनब या फंगफम अदोमगी मनाक नकप तिलहात हिदा योनफम सिंग सिजनबियो ब्रान जी आर
10: खंगन जबा मणिपुर होंगट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की अखनब जनरल बॉडी मिफम लागलीब ऑगस्ट कुंथ्रा नोमाइजिंग नुमित के अयुक पुंग त्रामाथोय मखाइ ताब मतमद लमलोंथोंग मयाद लेब खुराइ पुथिब कम्युनिटी हॉल द पांगथोलगनी मिफम असिद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मतुंग इन पे रिविजन खुदिंग की हेंगल लकप डीए की फंफम थोकप सेनफम होंगट सिंग द सरकार न गसी फाव पिबिदब मसुंग अतै तालिब दाबी सिंग की मतांग द कुबन खनगनी मरमदुना एसोसिएशन की मेंबर सिंग न मतमचाना लिंगबिरक्तुना मिफम असिद सरुग्या बिरनब एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी के एच नाउबिना पाउजे लगली
11: मणिपुर स्टेट आर्काइव्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने सिंधुना निफुमरी सुबह आर्काइव्स वीक लिसिंगनी कुंतरुक लागलीब ऑगस्ट की तांग कुंथ्रा माथोइदगी हौदोकनी तौरमबादु खुदोंग चादब खरदगी मतम ककतना यैथोकले हाइना डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर मणिपुर अमदि डिप्यूटी डायरेक्टर मणिपुर स्टेट आर्काइव्स ना तौलप चेरोल अमन खंग लगले.
12: हेलो खुंगंग
2: हा खुदिंग रोब थांग खुंगंग की थोरम संदोक चब.

मकलमथिल की थरम क्या संदोक तो नता हंजरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देखनी होजिक लांथोकचरी डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर डा थौवाल जिला की चिथी अईबा अखोई की थौवाल की

0: ni imphal na iram dam da thok liba chayul chayul gi oiba thodok sing paudam duna miyam da tahanjari haying thang junumit pung tare taba matam da khonjol na chom da phangbigani chayul sida manipur thauramasi gi saruk ama oina imphal west district ki manung chen leiba nagamapal chungkham lerakta mechanized rotary parking sanga bagi thauram da indian smart city limited ki ceo th hari kumar singa chayul sida manipur gi tinga unaba tahanjagani thauramasi bu puthok pi shagol sem roma
1: नगामापाल चुखाम लेरक की मपासवाई दा अहानबा मणिपुर की पार्किंग की फैसिलिटी हमा कोई साजवनी मसी तोपतोपा कोई की मणिपुर द अहानबोइना अमसुंग प्रोबेबली इंडिया दा खादी की अहानबा फर्स्ट टाइम कोई की सिगी मैकेनाइज्ड रोटरी पार्किंग सिस्टम सी इंट्रोड्यूस तो जब अपन अहान में सिटी नी सिगी यूनिक फीचर ना माई यम लिमिटेड स्पेस था मैक्सिमम पार्किंग सिस्टम कैपेसिटी होल तो सिस्टम एंड इट इज फुली मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड
0: तोंगान तोंगान बा कानरबा थौरम सिंह आकाशवाणी इम्फाल की नहारू की खोंजल टीम ना संदुक्तना लाकली हयेंग थांग जुनुमित की नुमिदांग पुंग तरु कमिनी तरा नहारू की खोंजल थौरम दा तहन जगनी सनासम मेघचंद्र सिंह हीलर सनासम आकाश ट्रेडिशनल हीलर्स का उनदुन वारी बताई साबा
2: असाई मागी दिस हेमपा मतांग हि द माजी दिस हेम सेम बजी द मागी छरुजी चोंथोग लैबा हाय तारे थबाकी छरुजी तुंगलोम द बैक साइड द सेमपा मतम जी द फलोंग चंगी बाय तारे थबाकलोम द फलोंग कापथोखरब माई हाने फिबम द ताग्रब अद माजी आइन लाउरे द लाउरगा नसी दगिने चही कुंथ्राई मेया द इन ओक्टो थौरमी अद माई रिजर्व चपद देदि लुपचा माहाइबा माना छाउ द न मोय अनि से ngathi चपा हाय तारे को माई छरु दो तौगि बने मतम द माना नागि बम फमसु चोंथोइ बम फमजे रिपचे सिओइबा अदुनि आइ पुनसि द ख्वाइदिन नक पादु
0: किनथा ख्रबा पुरा अमुख हन न थोन बयाय अदुबु पामि हाइदुनासु आंगांग सिंगबु सेमनिंग बम मतम द सेमबदि ngamlo मखोइगा अनक पमरी थमदुना नुंगशिना लुइना बि बचंगी लागलिबा ऑगस्ट की तांग कुंत्रा नोमाइजिंग नुमित की पुंगतरु कमिनिट निफु खुंगंगि थौरमगि सरुक अमा उइना तहन जगनी मामा मपा सिंगना आंगांग सिंग करम न लुइना गनी हाइब हिरमसिदा एचडी काउंसलिंग एंड करियर सोलुशन गि फाउंडर अमाकचम देवला देवीगा उनदुना वारी साबिगदब इरेंगबम अजित कुमार मैते थौरमसिबु पुथोकपी नोंथोमबम रोमा
3: पेरेंसिंग से आइगी थबकतु कुमनबा को रिलैक्स होइना बाना अदु चना बीएम ओइना हाइदि हानादि लैरमबना तमिन हजिकिनि गो सिमतम से पेरेंस कतंग खंगजन बिखदौ जेको मोबाइल सिदंगना लुइना याबना तेबा आंगांग से मा सेमकलक पजे को रिस्पोंसिबिलिटी सेम चाव हाय तारे अदुना सिदैसिता खगी डेटा कतंग हाइजरामगे आंगांग से जे स्क्रीन से सीजनरी बको एडिक्शन सलिब Around 52% of the addiction is around 52%. Daily, we have 4 to 6 hours. Even if we have a survey, we have a screen time, we have a parents survey. At least 2 hours later, 3 plus 10 is the maximum. And we have a lot of attention to the attention span. We have a lot of attention to the academic problem. Behavior issue lakani tumba kairani aduna magi physical mental da dum loina disturbance laiko
0: hakchang kayat sing phana thamba haibasina miyoi ba ekhoi gi di lengdraba athoi balanni haina ahal laman singna haina duna lakli yai fayumbal gi thoram da mit ubagi pangal leitraba miyoi singda mangal piba haiba hiramasida siza eye care foundation da senior consultant uina thopuriba dr nurnika khuraizam ga ekhoi gi mihut seram linthoi ga unabagi thoramasi lakliba august ki tang kuntra mathoi थौकाबा नुमित की पुंग मरी गमिनित मंगा चटपा मतमदा तहन जगनी
4: आई डोनेशन की याम नुंगाइबा हाइकत्रा वा अमा लेरिसिना अखोयगी कॉर्निया से ट्रांसपेरेंट ओइबा स्ट्रक्चर अमा ओइबनिना ईगी सिंगली से चेनबा यादेबा ईगी सिंगली चेलदी मागे ट्रांसपेरेंसी तो लेर रोइदना ट्रिक लंगना कडिमता अवाउ पकडिम लेतना लहेनगा दोइनिना ए वैस्कुलर हायबा खोइना सिंगली चेनदाबा ई चेनदा मफमनिना ब्लड ग्रुपिंग हायबा एचएलए टाइपिंग हायबा आइना ए पॉजिटिव ओइरे हायरो अदोमनो positive hairo anybody amana amada pi ba yaya ba actually typing kaina atopa organ dadi changna bane mari mata na tadi yade kaina adu so amta leite anybody na pi ba yaya aduga domna hujik hangbira iba jahi gi difference to anganga magi cornea sine hele ba healthy oiba kai gi nobu angangi organ dudadi aging process to how dribani na yam healthy oibane aduna ahanna mana angang khara pikpal dugi healthy obe konya do phangadi marai ba phabane hena magi do phajagadoi ne
0: imung amagi samas amagi yumbi oigadaba inkhailakli ba angang singbu semba haibasi arai ba thabak amadi nati mama mapa uibe singna macha singi apamba na karino munna khanglaga loinabi ba tangai fadi lakli ba september gi tang ama lebakpok pa numit ki ayuki pung tarit community nifuda sandok chagani atop

गीत खुदोल गहुम सुबदा तामिनसी लता मंगेशकर मदी किशोर कुमार अनिगे पुनब खोंजलदा गीतमा

0: सुना दी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों आज बात करते हैं मोहब्बत की। मोहब्बत शायद वो एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। कभी एक मुस्कान में मिल जाता है तो कभी किसी की खामोशी में मोहब्बत चुपके से सुनाई देती है। कभी किसी के साथ होने की खुशी में मोहब्बत होती है तो कभी किसी की याद में भी दिल हल्के से मुस्कुरा देता है। तो आइए आज की शाम मोहब्बत के कुछ ऐसे ही रंग महसूस करते हैं। शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों बात हो रही थी मोहब्बत के रंगों की, तो एक रंग तो के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मोहब्बत में दूरी हमेशा रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती। लोगों को लगता है कि दूरी होती है तो शायद मोहब्बत कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये दूरी उन्हें और गहरा कर देती है, उन दोनों की मोहब्बत को गहरा कर देती है। और दूर रहकर ही तो पता चलता है हमें कि कोई हमारे लिए कितना खास है। कुछ लोग पास होकर भी हर पल, पास ना होकर भी हर पल हमारे साथ रहते हैं। ऐसे ही खूबसूरत याद के नाम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी बहुत खूबसूरत होती हैं। कुछ लोग हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनकी जगह दिल में हमेशा बनी रहती है। वक्त आगे बढ़ जाता है, मगर कुछ एहसास वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। इसी अधूरे लेकिन खूबसूरत एहसास के नाम कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों हर रिश्ते में कभी ना कभी नाराजगी जरूर आती है, लेकिन एक छोटी सी माफी बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि जहां प्यार है, मोहब्बत है, वहां रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश होती है। कभी अपनी गलती मान लेना हार नहीं, बल्कि उस रिश्ते को बचाने की जीत होती है। और इसी एहसास के साथ सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said both Indian embassies in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, tomorrow. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production IIP expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The data, July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. And India's Velavan Saltil Kumar will take on Hungary's Balázs Farkas in the final of the PSA Budapest Squash Open tonight. Velavan stormed into the title clash with a thrilling 3-2 victory over compatriot Vichor Trane in the semi-finals last night. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र की ताज़ा अंक में आपका स्वागत है आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य श्री भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है
2: नमस्कार धन्यवाद
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से
0: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex adds over 300 points, Nifty settles near 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year, and India's foreign exchange reserves surge to a record high of $729.3 billion as of the previous week.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला निफ्टी 24,200 के स्तर के नजदीक बंद हुआ देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में 6.7% की वृद्धि हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर $729.3 billion पर पहुंचा

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए अब शुरू करें शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही. प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 331 अंक यानी 0.43% की बढ़त के साथ 77,265 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक यानी 0.35% की तेजी दर्ज करता हुआ 24,176 पर पहुंच गया. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन टुडे. सेंसेक्स एडवांस बाय 331 पॉइंट्स 0.43% टू क्लोज एट 77,265. निफ्टी गेन बाय 85 पॉइंट्स 0.35% टू सेटल एट 24,176. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index eked out a marginal gain, while the small-cap 100 index added 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up after falling for two consecutive sessions and traded in a narrow range throughout the day.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर, तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. लाभ उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में सबसे अव्वल रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके शेयर 4.1% बढ़त के साथ बंद हुए. इंफोसिस को 3.3% का और टेक महिंद्रा के शेयर 3.2% मुनाफे के साथ बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.3% लुढ़क गए. अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.2% का नुकसान हुआ, जबकि एशियन पेंट्स के शेयर 1.1% नीचे आकर बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors edged upward. Among the top gainers focused, IT jumped 3.4%, information technology climbed 3.3%, and PSU banks rose by 1.3%. In contrast, insurance decreased by 0.6%, realty, consumer durables, and oil and gas each dipped by 0.3%, and FMCG as well as energy fell by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,308 companies advanced, 2,029 companies declined, and 212 companies remain unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ. 95.39 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. एकेबी, आज हम बाजार की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में तेजी रही, क्या प्रमुख कारण रहे आज की तेजी के पीछे?
2: प्रधान जो कारण जो आज हमें दिखने को मिला वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट ने काफ़ी इसमें प्रकाश डाला है. अगर आपको आपको मालूम होगा कि वैश्विक बाजार में एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है एक दो दिन पहले उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी आशाजनक रही है, और उस आशाजनक परफॉर्मेंस से अनुप्राणित होकर आज की आईटी सेक्टर में काफ़ी उछाल दिखने को आई है. हालांकि बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी उछाल आई है, पर उतना नहीं आया जितना कि आईटी सेक्टर में आई है. मैं कहूँगा कि जो पिछले दो दिन की जो गिरावट के बाद जो बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में ज़्यादा सेंटर्ड थी, आज की जो रिवाइवल जो है स्टॉक मार्केट की वो आईटी सेक्टर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है. करीबन 3% आईटी सेक्टर का एक दिन में बढ़ना, ये आईटी सेक्टर का एक नया असेसमेंट मुझे लग रहा है कि हो रहा है, कि पहले में जो एआई लेड जो एक हताशा एक छा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो हताशा को दूसरी तरह से उसका एक आंकलन किया जा रहा है. उसी का परिणाम आज स्टॉक मार्केट हुआ था, पहली बात. दूसरी बात ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी पैसा ले जा रहे हैं, पर अगर आप नेट बाई, नेट खरीदी और नेट बेचने में अगर उसको देखें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की जो बेचना जो है उसकी गति थोड़ी कम हुई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स

0: कि जो खरीदना नेट बाई जो हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो उससे जो मार्केट में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आई है वही आज के मार्केट में वो दर्शा रहा है। और तीसरी बात ये है कि मार्केट में शायद कुछ आशा की किरणें को दिखने को आई, वो आशा की किरणें लगा कि मुझे दो तरफ से आई। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर जो आए हैं उसमें हालांकि वो लैगिंग नंबर्स हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं है, पर उसमें ये लगा कि शायद फेस्टिवल सीजन के आने वाले में भी शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैंने स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जो एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। और दूसरी बात कि बहुत जो मार्केट के जो खिलवाड़ जो हैं वो समझ रहे हैं कि जो केविन वॉश का जो जैक्सन होल में जो उनका एक बहुत ही एक एक एक घंटे डेढ़ घंटे बाद मेरे ख्याल से जो वायोमिंग में जो हर साल में एक कॉन्फ्रेंस होता है जैक्सन होल में, वो उसको सारा विश्व के सारे जो मार्केट विशेषज्ञ हैं वो देखते रहते हैं कि उनका इन्फ्लेशन के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर और वैश्विक परिस्थिति के ऊपर उनकी क्या टिप्पणियाँ होंगी, क्या उनके इंगित होंगे उसको देखे हुए। और जो खबरें में जो आ रही हैं आज के मार्केट में, जो लगा मुझे कि जब मार्केट चल रहा था कि शायद वो एक ऐसा एक एक संदेश देंगे जो संदेश मार्केट के लिए उतना बुरा नहीं हुआ है, उसके लिए भी एक आशाजनक एक मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है।
1: Well, you have given us a strong summary of what happened in the market today and what are the influences for the market as well. The IIP figures for the month of July, which has gone up by 6.7% and then covers four sectors, it came after market hours. So clearly, it should have an impact when market reopens next week starting Monday.
0: Well, you are underestimating the market's intelligence mechanism. The market's intelligence mechanism is such that they anticipate these numbers, and these numbers were already doing the rounds that particularly the manufacturing sector has done very well, which is why the market is reacted even before the numbers were officially made public.
1: Because the PMI for July and August is well above 50,
0: absolutely,
1: which shows expansion and not contraction. Absolutely. So yes, I do agree with what you are saying. Just coming back to what's happened today in the market, despite the closing auction session for the F&O expiry, the market still went up today. What is it about the market today, apart from information technology, that is really, you know, fueling that kind of confidence? You mentioned about banking as well. Bank Nifty fell only by 14 points, that index, but the PSU banks went up by 1.3%. Why is that?
0: Well, there is a certain clouded outlook on credit. The banking sector is in a sense split quite wide open, whereas the public sector's credit outlook is far, far better, and their performance criteria measured by the net NPAs, net non-performing assets, is as good, if not better, than the private sectors. On the contrary, the private sector, private banks, are still struggling with how to take care of the credit. You know, the credit demand growth is still very tepid. So, which is why you will see that if you take the overall banking sector, they have done well, I think 1.14% increase. But if you look at the public sector banks, their performance has been far better, as you rightly pointed out, than the private sector bank.
1: What is the scope for mid-cap 100 and the small-cap 100 index? So they have just gone up very marginally. But typically, when you see the large-cap index, Sensex and Nifty, go up, then mid-cap and small-cap also go up in a way disproportionately higher. But that's not the case in the market today.
0: That's because the mid-cap and the small-cap had suffered a significant erosion in their value in the previous many sessions. And I think what you are seeing is probably an upside to the mid-cap as well as the small-cap, more with the small-cap, where the upside looks to be on the higher, on a fairly significant than what we are seeing on the large cap. Because if you have noticed that in the previous many sessions, mid cap took a big hit, small cap took a smaller hit, and now it's time for the mid cap and the small cap to probably make some recouping.
1: So typically we talk about FIIs, FPIs finding value in our markets, and they have been the net sellers so far. What is the strategy of the DII, the domestic institutional investors, mutual funds, insurance companies? What are they looking for in terms of valuation in our markets right now?
0: Well, right now, I think the domestic institutional investors are not really looking at the valuation. On the contrary, they're trying to keep their powder dry in light of many IPOs that are going to hit the market, number one. Number two, the government is going to sell stakes in some of their companies, particularly the IDBI Bank. So the domestic institutional investors are actually waiting in the wings, keeping their powder dry, maybe booking some gains and keeping the money so that they can make the right investments in these IPOs as well as the disinvestment offers.
1: Well, let's move on to now some macroeconomic data. India's industrial output growth as measured by the index of industrial production expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The sharp upward revision in June IIP growth to 8.8% from 7.3% also indicates that the industrial momentum entering the July quarter was stronger than initially estimated. According to government data released today, manufacturing, which carries the heaviest weight in the index, grew by 7.3%, while electricity and gas supply posted a 8.7% expansion in July. Water supply, sewerage and waste management rose by 7.4%. However, the mining sector proved to be a laggard, posting a negative growth of 0.9% last month. AKB spoke about strong July numbers and how the market has also managed to predict that there would be strong July numbers as well, again based on what the PMI manufacturing is for July and August. For August is 52.9. My question is, why is mining seeing a negative growth of 0.9%? Even though if you look at the index of core industries data for the month of July, which went up by 5.4%, out of the nine sectors, you have iron ore, which actually saw a rise of 29.5% in terms of its output, and coal also saw a rise of 7.6%. These are both commodities and they are both dependent on mining.
0: Well, what is happening is that in July, there was a sudden, especially in the latter half of July, there was a sudden surge of rains and the monsoons had picked space. And as you would know, that in the month of July, the mining sector and the quarrying sector, they normally, traditionally, do not come up with good numbers. They actually very often shows in a negative contraction. Now, you will naturally point out that it is July last year, also something similar. But this year, the July, the second half, has suddenly surged. The monsoon, there was the rains had surged, and almost virtually all activities but mining, and even some sectors like cement, saw a downtrend, and which is why the mining and the quarrying, the numbers are very unimpressive. But I think it's very important to note that the manufacturing, if you look at the April-July combined number, is still at a very healthy above 6.5%. So it's still not what it ought to be. It should be manufacturing in a country of India's nature and complexity should be in double digit. But still, I would say that reaching a level of 6.5 is a good sign.
2: यहाँ पर एक भी समझना चाहेंगे कि जून के तुलना में थोड़ा सा हम वृद्धि दर में थोड़ा सा हम कमी देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या विश्वास दिला रहे हैं हमें इस पूरे वर्ष के यदि अवधि को हम देखें तो जुलाई में जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन रहा
0: जरूर आपने एक अच्छा प्रश्न किया है मुझे जो ये लग रहा है कि जो आईआईपी नंबर जो है ये वैल्यू बेस्ड नहीं है ये वॉल्यूम बेस्ड है इसका मतलब ये है कि ये कितने हजार यूनिट या कितने लाख करोड़ यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उसको ये आकलन करती हैं ना कि इनके दाम आकलन करती हैं तो उस तरफ से अगर आप देखेंगे ये वॉल्यूम बेस्ड आईआईपी जो है ये दर्शाती है कि जो एसेंशियल मार्केट में जो डिमांड जो है आपकी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो डिमांड जो है वो अभी भी काफ़ी स्वस्थ हैं काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड को मेंटेन करें तो हमें चिंता की बात शायद थोड़ी कम होगी जो हम पहले जब वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बारिश न आने के बाद में जो हमारा जो आउटलुक तो था वो इतना था और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ जब आकलन आएगी देन फर्स्ट क्वार्टर का और सेकेंड क्वार्टर का हम काफ़ी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 12 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़ी और ये स्तर 591 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 114 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सुरक्षित भंडार में 26 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 4 अरब 90 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है। उधर विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर में 112 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 18 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। एकेबी रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा भंडार अपना पहुंचा है, क्या दर्शा रहा ये और किन कारणों से इसमें यह बढ़ोतरी हम देख रहे हैं?
0: अगर जब जब जब पश्चिम एशियाई में जब युद्ध छिड़ा जब उसके बाद तेलों के दाम बढ़े तब हमारे पास उस समय करीबन 722 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा कोष था। उसके बाद ये काफी नीचे आ गया था, करीबन 680 तक 685 तक आ गया था। और आपको ये शायद नोटिस करेंगे ये नंबर जो है ये 21 अगस्त के नंबर हैं और 21 अगस्त तक हमारी जो नई जो स्कीम्स जो थी एफसीएनआरबी के नीम्स जो एनआरआई के जो पैसे जो आ रहे थे वो पैसे काफ़ी अंदर आए हैं, करीबन 50 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर की पैसे जो आए अगस्त 31 तक उसका अवधि है वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी नहीं है और भी थोड़ा बढ़ेगा और ये बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी जो मंथली इम्पोर्ट की जो बिल जो हैं वो 10 महीने नहीं शायद 11 से 12 महीने तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिभंगी से एक्सटर्नल सेक्टर की ये जो छवि जो है ये मार्केट के लिए इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल है।
2: यहाँ पर श्रोताओं के हित में एफसीएनआरबी ने किस तरह से भूमिका निभाई बहुत संक्षेप में? ये
0: एनआरआई को एक फैसिलिटी दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपनी जो विदेश के मुद्रा यहाँ पे वो जमा कर सकते हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देगी जिससे कि और जो काफ़ी कमर्शियल बैंकों ने का उनका लेवरेज देकर वो पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। तो जो समस्या नॉर्मल जो जो जो जो एफसीएनआर एनआरआई डिपॉजिट में होता है कि एक्सचेंज रेट के जो तारतम्य जो होता है उससे ज़्यादा इंसेंटिवाइज नहीं होते हैं, इस इंटरेस्ट रेट की जो जो जो स्ट्रक्चर जो थी वो उससे एनआरआई ने काफ़ी लाभ उठाया और इसीलिए करीबन 56 बिलियन डॉलर का पैसा अभी तक आ चुका है
2: जी।
1: In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative. The scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report.
3: Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 67 this year, showcasing deeper access to credit, insurance, saving and digital payments. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शैंपिन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है। दोनों देशों ने 2026 के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की इच्छा को भी दोहराया। भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। और आगे बढ़ते हैं
1: टू द एशियन मार्केट्स
2: और नजर डालें एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया पर। वहां कोस्पी सूचकांक 1.8% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। उधर जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई।
1: In more news, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said renewed diplomacy with Washington remains possible if the US changes its approach and abandons coercion. Ms. Araghchi said in a social media post that the US should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights and uphold commitments. He also described recent talks with Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Althani as productive and creative. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices eased today. Brent crude was trading 0.5% down at $89.30 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% lower at $82.84 per barrel when reports last came in.
2: आइए श्रोताओं आपको लिए चले अंतिम चरण में सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% बढ़कर 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.8% बढ़कर 2,43,892 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से के भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles nearly 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year. And India's foreign exchange reserves surged to a record high of $729.3 billion as of the previous week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi yesterday, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday bid farewell to outgoing Ambassador of the European Union in India, Hervé Delphin.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज 12:11, 10 सेकेंड और ये वक्त कार्यक्रम निशिगंधा का। निशिगंधा में सबसे पहले जो गीत आप सुनने वाले हैं उसे हमने लिया है फिल्म कुदरत से, और 1981 की फिल्म है ये कुदरत। कहानी का लेखन और निर्देशन चेतन आनंद साहब का रहा। मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में आपको दिखेंगे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी, जबकि फिल्म में सहायक भूमिकाओं में प्रिया राजवंश, राजकुमार और विनोद खन्ना भी दिखे। गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, संगीतकार हैं आरती बर्मन और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। लता जी की आवाज़ में बेहद ही मधुर सा कर्ण प्रिय ये प्यारा सा गीत आप सबके नाम। आकाशवाणी गोल्ड अंजलि।

रात के सफर पर जब चल निकलेंगे तो कितनी ही बातों का यादों का जज्बातों का खुशी का गम का अफसाना छिड़ेगा और बस दिल में महसूस होगी कहीं गुदगुदाहट तो कहीं कसक और टीस बस इन पलों को जीते हुए पूरा करेंगे निशिगंधा का ये हसीन सा सफर सफर हंसी इसलिए क्योंकि जब आप सब साथ होंगे और साथ अच्छा हो तो सब कुछ भला ही लगता है चाहे वो कड़वे पल हो या हंसी खुशी से लबरेज वक्त जी हाँ और अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की 1981 में बनी त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित मूवी सिलसिला से फिल्म सिलसिला में अमिताभ रेखा संजीव कुमार जया बहादुरी और शशि कपूर मुख्य किरदारों में दिखे और फिल्म का जो संगीत पक्ष था ना वो भी बहुत ही रोचक रहा कुल 7 गाने इस फिल्म में रहे फिल्म में संगीत किसी फिल्मी संगीतकार के बजाय प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने दिया जो गीत आप सुनेंगे उसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने तो चलिए ये एक और खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंच रहा है फिल्म कौन सी है जी हाँ फिल्म है सिलसिला और मुझे लगता है कि आप भी इस गीत को बेहद रात के इस हसीन और खूबसूरत से माहौल में काफ़ी पसंद करेंगे लता जी की आवाज़ में है ये गीत और इस गीत का जो संगीत तैयार किया है शिव हरि ने और गीत के बोल तो आपको बताया है जावेद अख्तर साहब

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त निशिगंधा का ये हसीन सा सफ़र हम लोग यहाँ पर तय कर रहे हैं। अंजलि है आपके साथ और गीत जो आपने सुना था फिल्म महान से था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत का म्यूज़िक कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने, गीत लिखा था अनजान ने। और फिल्म किसके डायरेक्शन में बनी थी ये महान मूवी 1983 में रिलीज हुई थी एस रामानाथन के डायरेक्शन में। अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं 1981 में एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म एक दूजे के लिए फिल्म से है और फिल्म के डायरेक्टर के बालाचंदर रहे। कमल हासन और रति अग्निहोत्री इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में दिखे और जो इस फिल्म के गायक थे ना SP बाला सुब्रमण्यम, उनकी भी ये पहली हिंदी फिल्म थी और इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्म्स में प्लेबैक किया और बहुत ही लोगों के दिल में दिमाग में उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो एक स्मूथ सी आवाज़ है, बहुत ही जैसे बोलते हैं मधुर सी, दिल को छूने वाली, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली आवाज़ लोगों ने, सुनने वालों ने बेहद पसंद की। और उनकी गायकी के लिए इस फिल्म में एक दूजे के लिए फिल्म में जो उन्होंने गायन किया उनकी गायकी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही शानदार सा नगमा लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

बहुत ही जैसे बोलते हैं ना दिल में उतर जाने वाला गीत था एक दूजे के लिए फिल्म से, और दर्शकों को ये फिल्म भी बहुत पसंद आई थी और गाने भी इसके, जैसे फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी ऐसे गाने भी बहुत ज़्यादा इस फिल्म का म्यूज़िक भी हिट हुआ था। और अब आप तक पहुंच रहा है एतबार फिल्म से एक बहुत ही, ये गीत भी जैसे मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद होगा, 1985 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रही। राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय मुख्य भूमिकाओं में दिखे। बप्पी लहरी जी ने म्यूज़िक कंपोज किया था इसके गीतों का, और इस गीत को जो आप तक पहुँच रहा है भूपिंदर सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुनेंगे, और गीत के जो बोल हैं कमल हसन कमाल के और फारूक कैसर के हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सुन लिया जाए ये गीत, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, फिल्म एतबार।

सागर सरहदी के निर्देशन में बनी 1982 की फिल्म बाजार से ही आपने गीत अभी सुना लता मंगेशकर और तलत अजीज साहब की आवाज में। फिल्म अगर आपने देखी हो तो सभी कलाकारों का अभिनय कौशल देखते ही बनता है। संगीत की धुनों से इन गीतों को सजाया था। इस फिल्म के जो गीत थे मोहम्मद जहूर खयाम ने और गीतकार रहे मीर तकी मीर, मिर्जा शौक, बशर नवाज और फिल्म में समता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख ने मुख्य किरदारों को निभाया था। तो बहुत ही जैसे बोलते हैं ना रात के इस आलम में इस तरह के गीत दिल को किस तरह का सुकून देते हैं ये तो सुनने वाले खुद बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं। और अगला जो गीत है वो भी बहुत ही दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला गीत है। फिल्म साथ साथ से 1982 की हिट ड्रामा मूवी रही जिसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल मुख्य भूमिकाओं में दिखे। पटकथा और निर्देशन रहा फिल्म में रमन कुमार का, गीत संगीत जबरदस्त रहा और फिल्म भी काफ़ी मनोरंजक रही। चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के गाए गीत दिल को छू गए। तो जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए गीत और संगीत तैयार किया कुलदीप सिंह ने। तो सुन लेते हैं फिल्म साथ साथ से गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में।

इस सफर का आखिरी गीत सुन लेते हैं फिल्म शराबी से, आवाज किशोर कुमार साहब की। फिल्म का इस गीत का संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने और गीत के बोल हैं अनजान के। प्रकाश मेहरा साहब की ये फिल्म है, निर्देशित फिल्म है, एक प्रसिद्ध जैसे बोलते ना हिंदी ड्रामा फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, जयप्रदा, प्राण और ओम प्रकाश मुख्य भूमिकाओं में दिखे।

कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद समाचारों के बाद 1:10 पर आप और मैं फिर होंगे साथ साथ यही आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन परियोजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing as rescue teams searched riverbanks and isolated settlements to survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed that the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock, he said. Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up a 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a full-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. India's industrial output growth, as measured by the Index of Industrial Production IIP, expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The sharp upward revision on June's IIP growth to 8.8% from 7.3% also indicates that the industrial momentum entering July quarter was stronger than initially estimated. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on Thursday attended the valedictory ceremony of the induction training program for the Indian Foreign Service officer trainees of 2025 Dutch and Bhutanese diplomats. In a social media post, Dr. Jaishankar said that this cohort of IFS officers will be part of India's journey towards Viksit Bharat. The minister also encouraged them to grasp contemporary challenges, cultivate a service-oriented approach, immerse in specializations, and be passionate about their profession. The IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places of Odisha. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात के अंधेरे, रात के गलियारे, यादें मानो तेजी से दौड़ी आ रही हैं, एक के बाद एक, थमने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में आप अकेले हैं तो ये यादें बहुत सताती हैं, जिनसे कभी आप आबाद थे। यथार्थ में आबाद तो अभी भी हैं, ख्यालों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में, जहन में, दिलो दिमाग में। खैर, जब जब रातें होंगी ये मन का अंधियारा फैलेगा तो दुखती रगों को जरूर छुएगा। दुखन, ये घुटन, ये चुभन, कसक तो बहुत उठेगी। दुखती रगों को छूती ये यादें टीस तो बहुत देंगी। यहां ये बात जरूर कहनी होगी कि भाई दुख निकल जाए, बह जाए, बट जाए, यही इसका सबसे बढ़िया मरहम है। तो चलिए यादों की इन गांठों को खोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बांटते हैं और एक खुशनुमा माहौल से सहला लेते हैं इन दिल के जख्मों को सुहाने गीतों के जरिए, गीत सुहाने में। आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

0: लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी साहब को आपने सुना दिल तेरा दीवाना फिल्म से। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार जीने की वजह बन जाता है। माया फिल्म में लता जी और रफ़ी साहब।
1: जिस दिन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

और जो अब गीत आप सुनने जा रहे हैं बहुत ही जैसे आपके दिल को पसंद आएगा मिस मैरी फिल्म से है लता जी की आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में दौलत नहीं शोहरत नहीं ना वाह चाहिए कैसे हो बस दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए बस यही करने से चूक जाते हैं हम बड़ी बड़ी हसरतें इच्छाएँ तमन्नाएँ लगा बैठते हैं ज़िंदगी से पर क्या है ज़िंदगी कोई समझ ही नहीं पाया हाँ बयां बहुत कुछ किया गया है इसके बारे में कभी कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता सोच भले अलग अलग हो पर इसी उतार चढ़ाव के साथ गुजर जाती है ज़िंदगी क्योंकि वक्त जनाब बड़ा बलवान है किसी के रोके रुका है कभी वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर आदत इसकी भी आदमी सी है

तेरा इंतजार मुझे हर पल रहता है हर लम्हा तेरा एहसास रहता है तुझ बिन धड़कने रुक सी जाती हैं तू मेरे दिल में मेरी धड़कन बनकर रहता है

उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। महिला एशिया कप का आरंभिक मैच कल थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला गया। ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को उसका सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and a recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements with survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that around 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected areas on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today in the first leg of the trip. Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday bid farewell to outgoing Ambassador of the European Union to India, Herbie Delphon, in a social media post. The minister appreciated the outgoing ambassador's contributions towards concluding the India-EU FTA and further strengthening the strategic partnership. He wished him the best for his future endeavours. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. India Meteorological Department IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places of Odisha. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Uttarakhand and northeastern states today. And that is the end of the

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और 2:11 हुए हैं। ये वक्त रहता है रात सुरमई का, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस गीतों की कुछ ऐसी ही बयार इस वक्त बहेगी जो सुकून और शीतलता दोनों महसूस कराएगी। गीतों की मिठास, गीतों की खुशबू जब चारों तरफ फैली हो तो क्यों ना मन मदमस्त हो उठे। नदी का किनारा, प्रकृति का सहारा, चांद तारों की छांव, सभी कुछ महसूस कर पाएंगे। यहाँ तन स्वस्थ हो, मन खुश हो तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल नजर आता है और ऐसे ही नजारों के बीच मधुर मीठा दिल में उतरता संगीत खामोशियों में खामोशियों से कुछ कहता। यही कहना सुनना मीठी और प्यारी यादें हमारे जहन में बसा देता है। तो चलिए बहुत सारी न्यारी प्यारी अजीज यादों को यहाँ बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि रात की तन्हाइयों में इनका साथ भी साथ दे। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 रात सुरमई, अंजलि है आपके साथ।

अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, क्यों ना करें याद तुझको, क्यों ना करें याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे।

दिल की किताब में गुलाब उनका था दिल की किताब में गुलाब उनका था रात की नींद में ख्वाब उनका था कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा मर जाएंगे तुम्हारे बिना ये जवाब उनका था

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध

0: प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और इस वक्त रात सुरमई का ये सफ़र मैं और आप तय कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि गाने आपके दिल को छू रहे होंगे, बातें भी कहीं ना कहीं दिल में पहुंच रही होंगी। शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान इसार करेंगे, देख के जलेगी हमें दुनिया सारी, इस कदर बेपनाह तुझे प्यार करेंगे।

जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, कोई आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए दीवाने, तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। आगे का सफर भी जारी रहेगा और आपके साथ रहेंगी माधुरी। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के इरोड में कोंगु वेल्लालोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस में समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे विधानसौधा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति केरलम के अलापुझा जाएंगे, वे केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पतनम मतिट्टा जाएंगे और वहां अरन मुला जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन तिरुवनंतपुरम में केरलम के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार ओणम पेजेंट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अमेरिका ने ईरान की सरकार को और वहां की सेना के वित्तीय स्रोत काटने की कोशिश के अंतर्गत ईरान के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक मेल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी और हांगकांग की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने बैंक मेल्ली की दुबई शाखा के प्रबंधक रजा मोहम्मद तईदी को निशाना बनाया। उसने कहा कि यह बैंक ईरान की सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुछ फोर्स और रक्षा मंत्रालय को मदद मुहैया करा रहा है। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements with survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from the affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected areas on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to the Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up a 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and resident of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday bid farewell to the outgoing ambassador of the European Union to India, Arabi Delfin. In a social media post, the minister appreciated the outgoing ambassador's contributions towards concluding the India-EU FTA and further strengthening the strategic partnership. He wished him the best for his future endeavors. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. India Meteorological Department IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places of Odisha. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Gangtok, West Bengal, Jharkhand, Uttarakhand and northeastern states today. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं और आज की रात हमराही लेकर माधुरी है आप सभी के साथ।

अजनबी फिल्म का ये गीत सुना आप सभी ने किशोर कुमार और लता जी की आवाज में आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ और प्यार की जो महक होती है वो ऐसी ही होती है किसी को भी दीवाना कर देती है बारिश बारिश नहीं लगती धूप धूप नहीं लगती और हवा हवा नहीं लगती लगता है कि ऊपर आसमां में चांद हो और नीचे बस किसी तरह छुप छुपा के हम बैठे हों और बातें कर रहे हों

देवता फिल्म से गीत सुन रहे थे आप लता जी और किशोर कुमार के आवाज में और ये है खास कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही और खास इसलिए है क्योंकि युगल गीतों की खास प्रस्तुति होती है इस कार्यक्रम में जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं।

किशोर और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे आप फिल्म फिर वही रात से आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल और सच्ची है कि प्यार में एक अजब सी खुमारी होती है क्या से क्या हो जाता है अच्छा भला जो इंसान है वो तबाह तो नहीं करूंगी लेकिन हाँ ये कहूंगी कि उसमें मोहब्बत भर जाती है हम मोहब्बत सिर्फ उसी से नहीं करते जिसे हम मोहब्बत करना चाहते हैं मोहब्बत इंसान को सच में बदल देती है वो सबसे मोहब्बत करना सिखाती है ऐसा नहीं है कि हम एक से मोहब्बत कर रहे हैं और दूसरे से जो है हम नफरत पाल रहे हैं बिल्कुल नहीं मोहब्बत अलग ही लेवल की जो है वो शय है और देखिए ना शायर भी क्या कहते हैं कि नींद भी बेदारी भी ख्वाब भी आंसू भी क्या क्या है इन आँखों की अलमारी में एक ही रंग का फूल था लेकिन ले आया एक सतरंगी तितली को फुलवारी में तुझसे पहले पहुंचूं राह तकूं तेरी कुछ बुद्धूपन भी है इस होशियारी में सच में मोहब्बत में थोड़ा बुद्धूपन तो होता ही है

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती

0: ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है हमराही का, जी हाँ, ड्यूट गीतों की खास पेशकश जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। तो चलिए सुनते रहते हैं इन गीतों को।

मोहब्बत का कोई सदमा उठाना चाहिए था, भुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था। मेरी अपनी और उसकी आरजू में फ़र्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा ज़माना चाहिए था।

रात्रि के 3:48 और हो गए हैं पूरे 20 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और कार्यक्रम है हमराही।

फिल्म धर्म करम का ये गीत सुन रहे थे आप। मुकेश साहब, किशोर कुमार और आशा भोसले साथियों की आवाज में आर डी बर्मन का संगीत, मच्छू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और प्यार की बात चली तो ख़त्म कहाँ होती है, कहीं नहीं होती, उसकी मंजिल बदलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। बातें यूं ही चलती रहती हैं, हर गीत में मोहब्बत भरी हुई है और हम यही तो चाहते हैं कि सबके दिल मोहब्बत से भर जाएं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और आराम से ये गीत भी बज जाए। फिल्म दिलजला से ये गीत है आप सभी के लिए, आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी हंगरी के बालास फारकस को सीधे गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। विश्व में 54वीं वरीयता के खिलाड़ी वेलवन सेंथिल कुमार ने बालास फारकस को 11-4, 11-2, 11-3 से सीधे गेमों में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में आज श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from the affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli One project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Ministry Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital Tashkent today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday bid farewell to outgoing Ambassador of the European Union to India, Hervé Delphin. In a social media post, the minister appreciated the outgoing ambassador's contributions towards concluding the India-EU FTA and further strengthening the strategic partnership. He wished him the best for his future endeavours. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that external sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places of Odisha. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Uttarakhand and northeastern states today. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और ये सफर है अरुणिमा का जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ स्वागत है अरुणिमा के इस सफर में आप सभी सुनने वालों का यूं ही हमें सुनते रहिए यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ

फिल्म रेशमा और शेरा से ये गीत आप सभी के लिए था लता जी की आवाज में और कुछ गीत लंबे जरूर होते हैं लेकिन इतने मधुर होते हैं कि धीरे-धीरे हमारे दिल को छूते जाते हैं भिगोते चले जाते हैं उन्हीं गीतों में से एक गीत ये था जो अभी आपने सुना दरवाजा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे आवाज दे रहा था तेरा रास्ता मुझे

फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज़ में और साथ ही साथ कहीं कहीं और आवाज़ें भी थी शायद आपने पहचाना हो चलिए बताइएगा कि आपने पहचाना उन आवाज़ों को और रात के इस पहर में अब क्या कहूँ कि हम मुसाफिर हैं एक कश्ती के दोस्त बन जाएं तो बुरा क्या है अब ये सोचा है खुश रहें देखिए तकदीर में लिखा क्या है

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा का ये सफर है और समय हो गया है सुबह के 4:34:10। माधुरी है आप सभी के साथ और हम इस सफर में सुन रहे हैं बेहद खूबसूरत गीत। गम तो खैर सबके पास होता है और सबके दिल में रहता है, पर अपना गम सभी को ज़्यादा लगता है। मुझे अपना लगता है, आपको अपना लगता होगा, लेकिन इस सबसे अगर परे होके देखें तो ज़िंदगी की खूबसूरती इन्हीं गम और खुशी के उतार चढ़ाव में छिपी हुई है। अब इस पर एक शेर भी आपके पेश नज़र कर देती हूँ कि तुझे इस गम का अंदाज़ा नहीं है, तुझे इस गम का अंदाज़ा नहीं है, ये दिल का गम है, दुनिया का नहीं है।
2: अब अगर हम

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ. न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि ये जो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरुणिमा का ये सफर है आकाशवाणी के FM गोल्ड दिल्ली पर और 100 अरुणिमा में आगे बढ़ते हुए और कुछ बातें हम और आप कर लेते हैं। बहुत खुश है कि वो तन्हा नहीं है, मगर जो साथ है उसका नहीं है। वो चाहे तो अलग हो जाए मुझसे, वो मेरा दोस्त है, साया नहीं है। उसे अपना शरीके गम करूं क्या, वो मेरा है, मेरे जैसा नहीं है। मैं आखिर किस तरह समझाऊं उसको, मेरे कब्जे में ये दुनिया नहीं है। हजारों बार मैं हारा हूं, लेकिन कभी मुझसे कोई जीता नहीं है। और न जाने कहां रूपोश है, कई दिन से उसे देखा नहीं है। हम चलते चलते खुद में खुद को ढूंढते हुए कितनी आगे निकल जाते हैं और फिर पाते हैं कि क्या हम में हम हैं।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

देखिए ना, रात का ये पहर भी बीते बीते बस बीतने को है और अरुणिमा का ये सफर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल चलते हैं समाचार कक्ष की ओर, लेते हैं देश दुनिया का हाल, यानी सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो सका। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें निकालने का काम जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर आज जा रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, लोक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की दर 6.7% रही। इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही, हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फरकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. This will be Prime Minister's fourth visit to Uzbekistan. Prime Minister's office in a statement said that during his two-day visit, Mr. Modi will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains and set the agenda for the road ahead. On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadir Japarov. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements with survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from the affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi yesterday, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims along to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts.
3: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. So right now, our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. So even today, I spoke in the morning to the Nepal foreign minister. We have given them rain of support offers.
2: On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Lakshadweep beginning today. During his visit, the Vice President will participate in a series of programs encompassing education, public service, cultural heritage, industry-academic collaboration, fisheries outreach and major public celebrations. Mr. Radhakrishnan will attend the Founders' Day celebration of the Kongu Velalar Institute of Technology Trust at Erode, Tamil Nadu today. World number 54 India's Velavan Senthilkumar won the Budapest Open Copper Tour title in Hungary after defeating home favourites Balázs Farkas 3-0, 11-4, 11-2, 11-3 in the final last night. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Ian Yeo 3-0 in the quarterfinals before overcoming fellow Indian V. Chotrani 3-2 in a thrilling semi-final. And that is the end of this news bulletin.

पांडे दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और अब शुरू हो रहा है भोर सुहानी का ये सफर। हमारे बहुत सारे रात के जो श्रोता हैं वो तो हमें सुन ही रहे हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठने वाले हमारे श्रोता भी अब उठकर हमसे जुड़ रहे होंगे। तो सभी को सुप्रभात। सुबह के 5:11 और हो गए हैं पूरे 18 सेकेंड। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती है माधुरी इस कार्यक्रम भोर सुहानी में।

दो कलियां फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मोहम्मद रफी की आवाजों में, संगीत रवि का और बोल साहिर लुधियानवी के। और जब वक्त बदलता है ना तो हालात भी बदलते हैं और इंसान अच्छे बुरे हालात से गुजरता है, धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। और सच्ची कहा है कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त के साथ हम सीखते चले जाते हैं और फिर समझते हैं कि जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें बहुत कुछ अच्छा बुरा जो हुआ उसमें हमारा जो करदार है वो कुछ और भी हो सकता था। और इसी पे दो लाइनें और नज़र करती हूँ मैं आपके, गौर फरमाइएगा कि परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशान हाल रहने से परेशानी नहीं जाती।